0: ਇਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਕਸਾ ਵੀ ਜੇਫਰੀ ਐਪਸਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਪੀੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹ ਗਿਆ ਸੀਤਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਈ ਪੀੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਗੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੇਫਰੀ ਐਪਸਟੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਆ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਗਏ ਆ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
1: ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ
0: ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾਂ ਤਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਨਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਇਹ ਨਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾਇਰਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਆਹ ਇਲਨ ਮਸਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਜਿਹੜੇ ਫੇਰ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਈਓ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਮਰਵਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਾਗਜ਼ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਚਾਹੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਉਹ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆ ਬਾਹਰ
1: ਕਾਫੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ
0: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜ ਆ ਉਹਨੇ ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਕਰੋਕ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ
1: ਬਿਲਕੁਲ
0: ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਆਣੀ ਉਹਦੇ ਮਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਆਪ ਮਰੇ ਜੱਗ ਪੜ ਲੋ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫੈਂਡਰ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਆ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਟੁਮੋਰੋ ਦਾ ਹੋਲ ਹੈਲ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੂਸ
1: ਬਿਲਕੁਲ
0: ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਰਲੋ ਆ ਜਾਣੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਆ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇਫਰੀ ਐਪਸਟੀਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ
1: ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇੱਕ ਨਿਕਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਡਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੀ ਕੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ 13 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 14 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ
1: ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ
0: ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਕਬਾਬ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ
1: ਬਿਲਕੁਲ
0: ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸ਼ਵਾਬ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸੋਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਵਾਬ ਤੇ ਕਬਾਬ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ ਯੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 13-14 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝਾਂਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ 1-2 ਰਾਤਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ
1: ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਰਨ ਮੂਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਛ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉੱਥੇ
0: ਇਹੀ ਕੁਛ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣੀ ਆ ਖੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਪ ਖਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਖੱਟ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੇ ਖਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਉਹਦੇ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਦਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੋਲੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ
1: ਬਣ ਕੇ ਟਾਈਮ 4 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਵਾਲੀ
0: ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਖਾਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪਾਰਸ਼ਲ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਆ।
1: ਅੱਛਾ
0: ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ
1: ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ
0: ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕ ਦੇਣੇ ਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਲੋਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਣਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੱਬਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੱਬਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਈ ਡੈਮੋ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਟਰੰਪ ਤੋਂ
1: ਜੀ ਉਹ 8-10 ਮਹੀਨੇ 9 ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੰਡ ਕਹਿ੨ੇ ਦੇਣਾ ਜਿੱਥੇ ਲਾਲ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹਰਾ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਡੈਮੋਕਰੇਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਧੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਅਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਦੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਇਮਾਰਤ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਕੀਰ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਆ ਉਹ ਡਨੀਪਰੋ ਰਿਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਲਦੇ ਦਾ ਪਾਸਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਦਾ
1: ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਗੇਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਆ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ।
2: ਹਾਂਜੀ
0: ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
2: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਖਾਖ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ
0: ਜੀ। ਸੁਣਨ
2: ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
1: ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ।
2: ਸੋ ਹਿੰਦੀ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਤਮਾਮ ਸ਼ਰੋਤਾਓਂ ਕੋ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੂੰ ਆਪਕਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾ ਸ਼ੋ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੇਕਰ। ਐਸਾ ਕਿ ਆਪ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਮੇ ਹਮ ਲੋਗ ਜੀਵਨ ਸੇ ਜੀਵਨ ਕੀ ਉਤਪਤੀ ਕੈਸੇ ਹੋਈ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਯੇ ਜੀਵਨ ਚਲਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਮੁਸੀਬਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੇ ਹਰਡਲ ਇਸਕੇ ਜੀਵਨ ਕੇ ਰਸਤੇ ਮੇ ਆਏ ਕੈਸੇ ਯੇ ਬਣਾ ਥਾ ਕੈਸੇ ਮਾਂ ਕੇ ਪੇਟ ਮੇ ਰਹਾ ਥਾ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਰਹਾ ਥਾ ਔਰ ਉਸਮੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਥੀ ਕਿਆ ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈ ਥੀ ਫਿਰ ਕੈਸੇ ਯੇ ਮਾਂ ਕੇ ਪੇਟ ਸੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਿਸਕੋ ਹਮਨੇ ਲੇਬਰ ਕਹਾ ਥਾ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੇ ਆਪਕੋ ਦੀ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਨਵਜੀਵਨ ਕੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਨਵਜੀਵਨ ਕੀ ਯਾਤਰਾ ਹਮਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀ और उसके बाद इस एक साल में क्या क्या डेवलपमेंट हुई जीवन में वो पूरी मैंने आप सब लोगों को बताई थी, और क्या हमें करना है, कैसे इसका बचाव करना है, क्या क्या वैक्सीनेशन का प्रोसेस कैसे कैसे चला, ये सब चीजें इन प्रोग्रामों में हम आपके सामने रखते आए हैं। और उसके बाद हमने ये कहा कि एक साल के बाद एक टाइटल बदल गया और उस टाइटल को हमने नाम दिया था टोडलर्स। टोडलर्स एज को हमने एक से बाद पांच साल तक चालू रखा, और उसके बाद इस टोडलर एज में भी बहुत सारी वही मुसीबतें वही बीमारियां कंटिन्यू रही जो नवजीवन के समय में इस जीवन के साथ घटी थी, और उनका क्या क्या उपचार उपराला हम लोग कर रहे थे वो अभी चालू था। और उसके बाद और बहुत सी नई प्रॉब्लम्स इसमें शामिल हो जाती हैं, उनके बारे में पूरा वेरवा मैंने आप सब लोगों को बताया था। और मैंने ये कहा था कि ये जो प्रोटेक्शन वाला प्रोग्राम था हमारा, जिसको हमने वैक्सीनेशन कहा, उस प्रोटेक्शन वाले प्रोग्राम को हमने 14 साल तक कंटिन्यू किया, जिसको हम लोग बोलते हैं बूस्टर डोज। तो बूस्टर डोज देने के बाद हम लोग थोड़ा संतुष्ट हो जाते हैं, या यूं कहें कि हम लोग ये समझते हैं कि ये बीमारियों की बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं ना जो उम्र के हिसाब से आती। अब छोटे बच्चों को प्रोस्टेट की बीमारी तो नहीं होगी ना, बड़ों को ही होगी ना। इसी तरह ही बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो उम्र के हिसाब से हैं, और उसका भी निर्वाह मैंने एक प्रोग्राम में आप सब लोगों को दिया था कि कुछ के बीमारियां एज के साथ बदी हुई हैं वहीं पर रहती है। तो 14 साल कहने का मेरा मतलब ये था कि एक तो हम ये समझते हैं कि कुछ के बीमारियां जो जीवन से बचपन से रिलेटेड हैं उनका वो दौर खत्म हो गया, उनका वो समय खत्म हो गया, इसलिए हम सोचते हैं कि अब इन वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि यहां तक पहुंचते पहुंचते वो हमारा उम्र का फेज निकल गया, और इसके बाद ये जो बूस्टर डोज हम लगाते हैं हम ये समझते हैं कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन या इसकी प्रोटेक्शन इस जीवन के लिए अब आगे जाने वाले काफी समय लंबे तक रहेगी। हाँ, उसमें मैंने ये भी बताया था कि कुछ इस तरह की बीमारियां भी हैं जो जीवन में दोबारा भी आ जाती हैं, लेकिन हम लोग ये समझते हैं दोबारा आ जाने कहने से मतलब ये है कि जो कॉजेटिव फैक्टर हम समझते हैं मटीरियलिस्टिक होते हुए, मटीरियलिस्टिक कहने से मतलब कि मॉडर्न मेडिकल साइंस ये समझती है कि बीमारियों के कारण मटीरियल है, जो हम नहीं समझते, होम्योपैथिक के तौर पर हम नहीं समझते इस चीज को, लेकिन हम जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के आधार पर हम समझते हैं कि बीमारियां पैदा करने वाले जो कारण है ना वो मटीरियल है। तो वो मटीरियल कारण जो है हम ये समझते हैं कि कई बार एक बार जीवन में आने के बाद शरीर में लेटेंट स्टेज में पड़े रहते हैं, और फिर कभी जिंदगी में दोबारा उसी तरह का एक्सपोजर हो गया तो फिर दोबारा कई बार उसी तरह की प्रॉब्लम जो है वो उसमें आ सकती हैं। और ये हमने आपसे कहा था, और उसका हमने कहा कि जब ऐसा होता है तो फिर हम उसका नाम बदल देते हैं, हम कहते हैं कि भाई नहीं, इसका नाम अब मीजल्स नहीं रहा, इसका नाम पॉक्स नहीं रहा, इसका नाम वेरिसेला नहीं रहा, हम कहते हैं कि ये शिंगल्स हो गई है। तो इस तरह बहुत सी बीमारियां ऐसी भी हैं जो अपना नाम उसका हम चेंज कर देते हैं, लेकिन उसके जो कॉजेटिव मटीरियल फैक्टर है ना वो वही रहते हैं। तो इस तरह की बातें भी मैंने आप सब के सामने की थी, और टोटलर एज के बाद एक ऐसी एज आई थी जिसको ना हम बच्चा कह सकते हैं ना हम जवान कह सकते हैं, और उसको हमने कहा था अडल्सेंस एज। और उस अडल्सेंस एज को हमने कहा था कि भाई ये एज 7 साल के बाद कहो, 6 साल के बाद कहो, और ये फिर आगे 18 साल तक, 14 से 18, कुछ लोग इसको 14 साल तक मानते थे, कुछ लोग बोलते थे कि नहीं 18 साल तक इसको कंटिन्यू करना चाहिए, तब तक ये जो डेवलपमेंट होने वाली है बॉडी में वो पूरी हो चुकी होती है, तो उसको हम अडल्ट मानने शुरू कर देते हैं। कानूनी तौर पर भी अडल्ट मानते हैं, वैसे शारीरिक तौर पर भी इसकी जो डेवलपमेंट हो जाती है वो वहां तक हो जाती है, तो हम कहते हैं कि भाई अब ये अडल्ट हो गया है। तो इससे पहले क्या था, ना वो बच्चा था ना वो अडल्ट था, तो उस फेज की जितनी भी प्रॉब्लम थी, उस फेज के हालात के जितने अचंभे थे, क्योंकि कुछ अचंभे भी तो मैंने आपको बताया ना कि लड़की से लड़का होगा, लड़के से लड़की होगी, इस तरह की बहुत सी चीजें जो हमारे नॉलेज में पहले नहीं थी, अब मेडिकल साइंस उसके बारे में जानती है, जेनेटिक्स ने इतनी स्टडी कर ली कि भाई ऐसा होता क्यों है, अब हमारे लिए वो अचंभा नहीं रहा, पहले वो अचंभा था, अब अचंभा नहीं रहा कि ऐसा हो सकता है और क्यों हो सकता है, इसकी डिटेल मैंने इन प्रोग्रामों में आपके सामने रखी थी। और उसके बाद एडल्ट एज तक पहुंचते पहुंचते इस शरीर में क्या क्या तब्दीलियां आई, और ये एक ऐसा दौर था, ये एक ऐसा समय था जिसमें फिजियोलॉजिकली फिजिकली शारीरिक तौर पे भी उस कार्यक्रम के तौर पे भी स्पष्ट हो जाता था कि जो लड़का है वो लड़की है, लड़का है वो जो लड़की है वो लड़की है। तो मतलब बाहरी तौर पे भी स्पष्ट होता है कि ये लड़की ही है, अंदरूनी तौर पे भी स्पष्ट होता है कि जैसे मासिक धर्म आना शुरू हो गया, जैसे स्पर्म बनने शुरू हो गए, सीमन आना शुरू हो गया, जैसे आवाज की चेंजेस मैंने आज सब लोगों को बताई थी, इसको हम लोग बोल ये जो सभी निशानियां पैदा होती है ना, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स। तो वो जो सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स हैं वो पूरे आने शुरू हो जाते हैं। उस वक्त फिर हमने एक स्टॉप लगा दिया था, और उस स्टॉप को लगाने का मतलब ये था कि अब हम इस जीवन को अडल्ट एज में ले आए हैं। लेकिन एक सवाल पैदा हो गया था कि अब ये पूरे का पूरा शरीर जो बना हुआ है इसकी बंतर के बारे में थोड़ी जानकारी कर लें, ताकि हमें पता हो कि इस शरीर में अगर कोई बीमारी आती है, अगर कोई घटना घटित होती है, तो उसके पीछे कहां पर क्या हमें खोजना होगा, क्या हमें ठीक करना होगा, और तभी ये जो बीमारियां हैं वो रूट आउट हो सकती। कौन चीज है जो इस शरीर को चला रही है फिजियोलॉजिकली, क्योंकि हमारा काम, मैंने ये कहा था कि होम्योपैथिक का जो सिद्धांत है वो एलोपैथिक सिद्धांत से या मटीरियलिस्टिक व्यू से थोड़ा सा और अलग है, और उसको हमने कहा था कि ये हम बाद में आपके डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन अभी हम ये कह रहे थे कि जो हमारी लिमिट है फिजिकल की, पदार्थ तक की, जो पदार्थ में हमें दिखाई दे सकता है उस तक की लिमिट रखते हुए मैंने आपको ये सब कहा था कि भाई ये बंतर जो शरीर की बनी है अल्टीमेट इसका अंदरून, इसका माइन्यूट कहां पर है, जिसमें कोई ना कोई नुक्स पड़ता है तो फिर इस शरीर में बीमारियां बड़े पैमाने पर दिखाई देती। मैंने इसमें आपको एग्जांपल भी दे दी थी, जो वो प्रोजेक्टर में फिल्म रखी हुई है और उसमें जो भी स्पॉट आ जाता है तो वो पर्दे पर होता है, हम लोग पर्दे से डील कर रहे हैं। ये जो शरीर है वो हमारा पर्दा है हमारी जीवन शक्ति का, और वो जो इसको जीवन शक्ति को अगर हम थोड़ा सा पदार्थिक रूप में लें तो सेल्फ है। तो असली बात मैंने आप सब लोगों को ये बताई थी फिजिकल रूप में कि ये शरीर की बनतर सेलों से बनी हुई है, ट्रिलियंस सेल हैं, लेकिन उन सब सेलों में एक समानता है। समानता क्या है कि उसकी बनतर, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शनिंग, कार्यक्रम करने का तरीकाकार, एक दूसरे को चीज बांटने का तरीकाकार, एक दूसरे से चीज इकट्ठी करके बाहर भेजने का तरीकाकार, ये सब एक था। और अलग अलग अंगों को बनाने के लिए इसकी शेप चेंज हो जाती थी, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर था या फंक्शनिंग थी वो वही रहती थी। तो ये सब बातें मैंने आप सब लोग के सामने रखी थी, और उसके बाद फिर मैंने सेल के बारे में आप सब लोगों को बताना शुरू किया था कि भी सेल जो जिसको सिंगल यूनिट या मिनिमम यूनिट हम बोल रहे हैं वो है क्या, उसकी डिटेल मैंने आप सबके सामने रखी थी, उसकी बंतर क्या है वो सब हम आप सामने रखी थी, सेल मेम्ब्रेन क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, या और इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, जितने भी चीजें काम करने वाली हैं जिसकी अलग अलग ड्यूटी है, तो वो शरीर में क्या क्या काम करते हैं जो बड़े पैमाने पे शरीर पे हमें बीमारी के तौर पे दिखाई देते हैं, या अगर ये तंदुरुस्त अपनी कार्रवाई कर रहे हैं तो शरीर की फंक्शनिंग पे इसका क्या इफेक्ट होता है, कैसे शरीर नॉर्मल तौर पे काम करता है, और अगर इसमें कोई नुक्स आता है तो अल्टीमेट वो नुक्स कहां पर आ रहा है। ये सब बातें मैंने आप सब लोगों को इन प्रोग्रामों में पहले बताई थी, और उसके बाद फिर एक ऐसा क्वेश्चन आ गया था जिसको हमने कहा था कि इंडिविजुअलाइजेशन, हर आदमी एक दूसरे आदमी से अलग है, चाहे ट्विन्स हों तो भी उनकी मानसिकता एक दूसरे से डिफर हो जाती है, चाहे वो शारीरिक तौर पे एक जैसे ही लगेंगे लेकिन उनकी मानसिकता डिफरेंस हो जाती है। तो फिर ऐसा कैसे हम कहें कि सभी लोग जो एक ही बीमारी का डायग्नोसिस लेकर आते हैं उसको जो निचली सतह है हमारी, वो जो सेल की सतह है उससे ऊपर की सतह पर हम पहुंचते हैं, तो फिर पता चलता है कि भाई नहीं, हर इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल है, हर इंडिविजुअल एहसास में, फीलिंग में एक दूसरे से अलग है, और इसी तरह ही अगर हम माइन्यूट चेंजेस जो आती हैं अगर उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे किसी چیز میں پیتھالوجیکل چینجز آ جاتی ہیں تو پھر سبھی میں وہی بولتے ہیں نا ہم لوگ. لیکن اس سے اور بریکی میں جائیں گے تو پھر پتا چلے گا کہ نہیں, احساس, فیلنگز, ڈیزائرز جو ہیں وہ سب میں الگ الگ آ جائیں گی. اور اس کی اگزامپل بھی میں نے آپ سب لوگوں کو دی تھی کہ بھائی اگر چار پانچ پاٹ کلر کے ہوں گے, الگ الگ کلر ہیں ہر ایک پاٹ میں, ان سبھی میں سے ہم لوگ ایک الگ پاٹ میں الگ رنگ سبھی میں ایک ایک چمچہ ملانا شروع کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سبھی پاٹس میں ڈفرینٹ کلر آتا ہے, ایک جیسا کلر نہیں آتا ہے, کیونکہ اس کا اپنا بھی رنگ تھا نا, اس پاٹ کا اپنا بھی تو رنگ تھا نا, اس میں جو ایک مکس کیا گیا جو سبھی میں ایک ہی مکس کیا گیا. تو بتانا میں یہ کہتا تھا آپ سب لوگوں کو کہ مان لیا جائے کسی کو ملیریا مچھر کاٹ لیا, اور اب مچھر کاٹ لیا تو ہم نے کہا کہ اس کو ملیریا ہو گیا. ملیریا کیوں کہا ہم نے, کیونکہ کچھ ایک ایسی آئیڈینٹیفیکیشن تھی کہ شیورنگ, ٹھنڈ لگ کر بخار ہوا, پسینہ آ کر بخار اترا, یہ سب اس کی جو ہمارے پاس آئیڈینٹیفیکیشن ہے جس کے بیس پہ ہم لوگ اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں, یا بلڈ کے طور پہ وہ اس کی رنگ جو ہے ملیریا رنگ چیک کرتے ہیں ہیموگلوبن میں, یا ایسے کہیں کہ ہم نے پیتھالوجیکلی بھی اور سمٹومیٹالوجیکلی بھی اس کے گروپ آف سمٹمس کو لے کر کہہ دیا کہ اس کو ملیریا ہے, یا کسی کو کہہ دیا کہ بھائی اس کو ہیضہ ہے, یا کسی کو کہہ دیا کہ اس کو ٹیوبرکلوسس ہے, اس کے آدھار پہ ہم نے کہہ دیا تھا. لیکن یہ سبھی فزیکل سمٹم تھے. یہ میں نے کہا تھا کہ اس جیون کو چلانے والی کوئی چیز آدک ہے, پاور ہے, انڈیویجول ہے, سبھی کی الگ الگ ہے. اور جس طرح وہ پارٹس میں کلر الگ الگ ہو گئے تھے نا, اسی طرح ہی جب کوئی بیماری یا ایسے کہیں کہ کوئی جراثیم کسی باڈی پہ ایفیکٹ کرتا ہے تو اس کے سامنے جو ویزیبل سمٹمز ہیں, فزیکل سمٹمز ہیں, وہ تو ایک طرح کے ہو سکتے ہیں, لیکن اس سے اوپر جو اس کا لائف فورس ہے, جو اس جیون کی ایکچولی ریسپانسیبل پارٹی ہے, اگر اس کے لیول پہ جا کر اس کو ہم شناخت کرنا شروع کریں گے تو وہ ہمیں الگ دکھائی دے. کوئی جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملیریا کے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو ٹھنڈ لگ رہی ہے, لے کپڑا نہیں لینا چاہتے, پسینہ آ رہا ہے, گرمی آ رہی ہے, کچھ لوگ بولتے کہ نہیں پانی نہیں پینا ہے, کچھ لوگ بولتے کہ پانی پینا ہے, اور اس طرح ہی الگ الگ طرح کی کریونگز ہماری ہوتی ہیں, اور کھانے میں بھی, پینے میں بھی, رہنے میں بھی, بات کرنے میں بھی الگ الگ طرح کی ہماری فیلنگز ہوتی ہیں, وہ سبھی پیشنٹ میں الگ الگ ہوگی. اور ایسا بھی ہے کہ ایک آدمی کی جو نیچر پہلے تھی بیمار ہونے سے پہلے, اب وہ بیمار ہو گیا کسی بھی بیماری سے, تو اس کی نیچر میں, اس کی فیلنگ میں, اس کی ڈیزائر میں, اس کے ایورشنز میں چینج آ جاتی ہے. لیکن ہم لوگ ان چیزوں کو ریکوگنائز نہیں کر رہے, ہم کیونکہ ہم لوگ مٹیریل طور پہ استعمال کر رہے ہیں نا بات کو. مٹیریل کا مطلب ہے کہ آج کل کی ماڈرن میڈیکل سائنس ہر چیز کو فزیکلی دیکھنا چاہتی ہے, کہ بندہ تو کہہ رہا ہے کہ میں بیمار ہوں, اور بندہ اسی وقت ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر اسی وقت اس کو بھیجے لیب میں, تو لیب کے ٹیسٹ جو بھی آئیں گے وہ کہیں کہ بھائی تم تو بیمار نہیں ہو کیونکہ تمہارے تو ٹیسٹ نارمل ہیں. کیونکہ ہم لوگوں نے میڈیکل سٹینڈرڈ آف ہیلتھ جو نردھارت کیا ہے, اس کا سٹینڈرڈ ہم نے نردھارت کیا ہے, اور وہ سٹینڈرڈ ایک ایز این ایوریج سٹینڈرڈ ہے, ایسا نہیں ہے انڈیویجول سٹینڈرڈ نہیں ہے. کسی آدمی کو ٹیمپریچر اگر ہوتا ہے 98.4 ہمارا, کسی کا سب نارمل ہی رہتا ہے, اسی میں ٹھیک رہتا ہے. اگر کسی کا 98.4 ہو جاتا ہے یا 99 ہو جاتا ہے تو وہ بہت فیورش محسوس کرتا ہے. اور اسی طرح بلڈ پریشر کی ایگزامپل میں نے آپ سب لوگوں کو دی تھی کہ کچھ لوگوں کو بلڈ پریشر 120 ہم نارمل مانتے ہیں, ڈائسٹولک 80 ہو گیا یا سسٹولک جو ہے 120 ہو گیا, یہ ہم نارمل مانتے ہیں. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اگر ان کو 120 80 ہو جاتا ہے تو وہ بولتے ہیں کہ چکر آ رہے ہیں. کیا ہوا ہے یہ, اس نے کیا ثابت کیا؟ اس نے یہ ثابت کیا کہ میڈیکل سٹینڈرڈ آف ہیلتھ جو ہم نے ایز این ایوریج لیا تھا وہ سبھی پہ فٹ نہیں بیٹھتا, وہ سبھی کے لیے انڈیویجول ہے, اور ہر آدمی کا وہ انڈیویجولیٹی ہے. تو کیا ہوا کہ لیب سے ٹیسٹ آیا, ٹیسٹ نے کہا کہ تمہارے تو ٹیسٹ سب نارمل ہیں. مطلب کیا ہوا کہ ہم نے جو سٹینڈرڈ آف ہیلتھ فکس کیا تھا وہ ایز این ایوریج لیا تھا اور سبھی کے لیے نہیں تھا. تو یہ بات کہہ کر میں آپ کو ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی ایک دوسرے سے انڈیویجول ہے اور اس کی فیلنگز ڈیزائرز ورشنز دوسروں سے انڈیویجول ہیں. بے شک بے شک سیل تک اس کی بنتر سیم ہے, اسی طرح کا کاریکرم ہے سیل کا, اسی طرح کی سٹرکچر ہے سیل کا, اسی طرح ساری کاروائی وہ سیل کرتے ہیں, لیکن جہاں تک اس سے اوپر کے لیول کی بات آ جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے بھن ہیں, ایک دوسرے سے الگ ہیں. تو پھر یہ کہہ کر بات میں نے آپ سب لوگوں کو یہ پہچانے کی کوشش کی تھی کہ اگر ہر آدمی انڈیویجول ہے اور اگر ہر آدمی میں جو اس شریر کو چلانے والی پاور ہے وہ انویزیبل ہے, پاور ہے, تو مطلب صرف ٹریٹمنٹ تو اس کا کرنا چاہیے نا. اصل میں ٹریٹمنٹ تو اس چیز کا ہونا چاہیے جو اس شریر کے نارمل اور اب نارمل ہر طرح کے کاریکرم کے لیے ذمہ وار ہے. کوئی بادشاہ اگر کسی دیش پہ قبضہ کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کے تھانے, اس کی کچہری, اس کے سب جتنے بھی کاریکرم قانونی کر چلنے والے ہیں وہ سب تو سیم ہی رہتے ہیں, لیکن قانون بدل جاتا ہے, کاروائی بدل جاتی ہے, کیونکہ اب نئے بادشاہ کی چلتی ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ ہماری جیون شکتی جو شریر میں ہے وہ انویجول پاور ہے, انویزیبل پاور ہے, اور اگر ہم نے اس کو کچھ ہیلپ کرنی ہے, کیونکہ کوئی اسی طرح کی وبا ہی ہے جو اس آدمی کے اوپر افیکٹ کی, اس کی وائٹلٹی کے اوپر افیکٹ کی, وائٹلٹی مجبور ہو گئی کہ اس شریر کا چلن بدلا جائے, اس میں پسینہ لگایا جائے, اس کو ٹھنڈ لگائی جائے, اس کو پیاس لگائی جائے, اس کو ان کور کیا جائے, کور کیا جائے, یہ سب جتنی بھی حرکتیں ہم کرتے ہیں, پیاس لگے نہ لگے, یہ سب حرکتیں ہیں, یہ اس چیز کی حرکتیں ہیں, یہ اس چیز کی فیلنگ اینڈ سنسیشنز ہیں جو اس شریر کی ذمہ وار ہے, جو اس شریر کی نارمل اور اب نارمل کاروائی کی ذمہ وار ہے. اگر وہ نارمل اور اب نارمل کاروائی کی ذمہ وار ہے تو پھر مطلب کیا, جیسے میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو ملیریا مچھر نے کاٹ دیا تو اس کا ایک انفلوئنس ہے, اس کا ایک انفلوئنس ہے جس کو ویسے عام بولی میں ایشنس کہہ دیتے, یہ اس دوائی کا ایشنس ہے, یہ اس چیز کا ایشنس ہے جی. اسی طرح اس کا جو انفلوئنس اس نے باڈی پہ افیکٹ کیا, باڈی میں جو ریفرنس بھیجا برین کو, برین تک تو ہم نے پڑھ لیا نا پورا کچھ کہ برین کے نرو کے ساتھ یہ باڈی ہماری جڑی ہوئی ہے, برین سے یہ جو لینگویج تھی وہ ڈی کوڈ ہوئی, اس پاور تک پہنچی, اس نے کیا فیل کیا, اس کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے جو سمٹم اس نے پیدا کیے اس میں شیورت تھی, جو سمٹم اس نے پیدا کیے اس میں پسینہ تھا, جو سمٹم اس نے پیدا کیے وہ اس میں تھرس لیسنس تھی, یا اس میں سمٹم پیدا کیے کہ اس میں بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی, یہ سب چیزیں اس کی وجہ سے تھی. تو میرا یہ کہنے سے مطلب یہ تھا کہ اگر ہم فزیکل باڈی کو, کیونکہ یہ ایکسپیریمنٹ کی چیز ہے, ایسے وشواس نہیں ہو سکتا کسی کو, وشواس اس پر بات پر تبھی ہوگا جب آپ اس کا خود ایکسپیریمنٹ کریں گے, اور اگر اس چیز کو جو اصل ذمہ وار ہے کسی چیز کی, اس چیز کو آپ پکڑیں گے, اس چیز کو ہیلپ کی ضرورت ہے اسی روپ میں ہیلپ کریں گے تو کوئی بھی بیماری جلدی ٹھیک ہو جائے گی, تو کوئی بھی بیماری آسانی سے ٹھیک ہو جائے گی. لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم لوگ کر رہے ہیں کہ اس فزیکل شریر کو جیسے کسی کی ٹانگیں پکڑو, سر تک پہنچنا ہے تو پاؤں پکڑ لو, پاؤں سے آگے اوپر چلتے رہو, یہ طریقہ کار ہم لوگوں نے اپنایا ہوا ہے, اور یہی ڈفرنس ہے ایلوپیتھک سٹائل میں اور ہومیوپیتھک سٹائل میں, کیونکہ ہم انڈیویجول کریکٹر نہیں دے رہے, کسی بھی بیماری کے انڈیویجول کریکٹر نہیں لے رہے, کیونکہ وہ انڈیویجول کریکٹر جو ہیں وہ ہماری پہنچ سے اوپر کی بات ہے, کیونکہ ہم فزیکل لوگ ہیں, ہم پدارتھتا کی لمٹ رکھتے ہیں, ہم سیل تک ہی اپنی کھوج رکھتے ہیں, اگر سیل سے اوپر جائیں گے تو الٹیمیٹلی ہم وہاں پر پہنچیں گے کہ اس شریر کا ریسپانسیبل پارٹی کون ہے. میں نے یہاں پر پہنچتے ہوئے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل اور دی تھی کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہوا میں لون گھول دو, نمک گھول دو, تو نہیں گھولا جائے گا نا, لگتا ہے یہ آدمی مورکھ ہے, ہوا میں نمک گھولنے کی ہمیں کہہ رہا ہے. لیکن اگر آپ امونیا گیس کو گند کو سمیل کرتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو امونیا گند ہے, اس کا مطلب امونیا کا سالٹ اس گند میں اس ہوا میں مکس ہوا, کب ہوا, जब ये उसकी शेप में आ गया। इसी तरह ही किसी भी बीमारी के जरासीम या किसी भी दवाई का इफेक्ट मटेरियल होते हुए भी उसका जो एसेंस है, उसके जो इफेक्ट हैं, वो हायर लेवल पे उस वाइटलिटी पर इफेक्ट करते हैं और वो वाइटलिटी मजबूर हो जाती है उस इफेक्ट के अंदर कुछ इस तरह के सिम्टम पैदा करने के लिए, जिसका हम अलग अलग बीमारी के तौर पे डायग्नोस करके नाम रख देते हैं। और जो मलेरिया काटा है, मच्छर काटा है, तो मलेरिया हुआ है, तो मलेरिया की जितनी भी कैटेगरी है, इतनी चाहे अमले बना दी है, तो उसके मुताबिक उसके सिम्टम पैदा होंगे। ऐसा होगा तो उसके अलग अलग सिम्टम्स हैं, वो अलग अलग फिजिकल रूप में पैदा, ये कब पैदा हुए? ये तब पैदा हुए जब बीमारी पैदा करने वाली चीज का एसेंस ने ब्रेन तक, ब्रेन विजिबल है, ब्रेन हम देख सकते हैं, फिजिकल बॉडी है, ब्रेन ने डीकोड करके इस शरीर की जीवन शक्ति जो इसकी रिस्पॉन्सिबल पार्टी है उस तक पहुंचाए। उसने जो फील किया, मैंने उसकी ये भी एग्जांपल दी थी कि मान लिया जाए आपका उंगली किसी गर्म चीज से टकरा जाती है, तो इमीडिएट एक सेकंड के हजारवें हिस्से में आपको वो ऑर्डर ब्रेन पर पहुंचता है, डी कोड होता है, वहां से होकर वापस ऑर्डर होता है, एकदम उंगली खींच लो, कितना समय लगता है आपको गर्म चीज को हाथ छूने के बाद एकदम खींचने में। इतने समय में हुआ क्या है, आपको नहीं, हम लोग नहीं समझते, लेकिन हुआ क्या है कि ये सेंसेशन नर्व के जरिए ब्रेन तक गया, ब्रेन ने डी कोड करके मन जो हमारा मस्तक है, या ऐसे कहें जो हमारी जो वाइटलिटी है, जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है शरीर के लिए, उस तक पहुंचाया। उसने उसी वक्त उसको ऑर्डर दिया कि उंगली को पीछे खींच लो। तो ये सब बातें करने से मेरा मतलब ये है कि मैं आपको ये समझा पाऊं कि इस शरीर को चलाने वाली बीमारी में या तंदुरुस्ती में चलाने वाली रिस्पॉन्सिबल पार्टी इस फिजिकल बॉडी से ऊपर है, और वही है जो फिजिकल शरीर से ऊपर किसी की इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल करेक्टर को निर्धारित करती है। इसीलिए शुरुआत में मैंने ये कहा कि इवन ट्विन्स होते हैं ना, उसके बॉडी स्ट्रक्चर एक ही जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन जब आप उसकी फीलिंग्स, डिजायर, वर्शंस की आप बात करोगे तो डिफरेंट हो जाएगी। और यही बात होती है कि किसी बीमारी का चलन जब भी किसी का प्रकोप किसी के ऊपर होता है, तो उस वक्त उसकी डिजायर, अवर्शन, फीलिंग्स पहले से बदल जाती है। जैसे वो बादशाह वाली मैंने बात कही, खाने वही, कचहरियां वही, कार्यक्रम वही, लेकिन रूल अब डिफरेंट हो गया, और जो रूल डिफरेंट हो जाता है दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय फिजिकल बॉडी। जिससे मैंने कहा कि प्रोजेक्टर में फिल्म रखी हुई है, उसमें कोई स्पॉट आ गया है, अब उसमें से जो स्पॉट का वो जो पिक्चर हमारे पर्दे पर दिखाई दे रही है वो बड़ी दिखाई दे रही है, अब पर्दे को हम आगे पीछे कर रहे हैं। जो सिद्धांत अभी हम लेकर चल रहे हैं कि क्योंकि हम मटीरियलिस्टिक हो गए हैं ना, तो मटीरियल तक ही हमारी पहुंच अप्रोच है, और उसको मानते हुए हम लोग उस पर्दे को आगे पीछे कर रहे हैं। यहां पर आकर मैंने आप सब लोगों को ये भी कहा था, उल्टी वाली मैं वोमिटिंग वाली एग्जांपल भी मैंने आपको दी थी, कि जो कुदरत, जो आपकी वाइटलिटी इस शरीर के साथ करना चाहती है, या जो उसको तकलीफ है वो आपको पहुंचाना चाहती है, आपने कुछ ऐसा खा लिया जो इस बॉडी को एक्सेप्टेबल नहीं है, वो ठीक नहीं उसको लगता, उसको वो निकालना चाहती है। वो एक्सप्रेस क्या कर रही है? उल्टी, जी कचा होना, मतलाना, वो इससे पैदा कर रही है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? मटीरियल बॉडी होते हुए मटीरियल चीज को समझते हैं और हम लोग उसको उसी वक्त खत्म करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए तो आपने देखा होगा ना कि बहुत सी बीमारियां दवाई खाने के बाद और बढ़ जाती है, घबराहट, परेशानी और बढ़ जाती है, और हम लोग बोलते रिएक्शन हो गई, साइड इफेक्ट हो गए। असल में क्या है कि वी आर वर्किंग अगेंस्ट द विल ऑफ अवर वाइटल फोर्स। जो वाइटल फोर्स थी, जो वो चाहती थी कि मेरी हेल्प की जाए, ये शरीर में जो अंदर जो चली गई है वो अनडाइजेस्टबल है, डाइजेस्ट नहीं हो रही, इसको बाहर निकाला जाए, या इसके जो इफेक्ट हैं इस बॉडी के सेलों को डैमेज करेंगे, इसको बाहर निकाला जाए, और आप जबरदस्ती कोई दवाई करते हो जिससे वो इफेक्ट बंद हो जाए, मतलब पर्दे को इधर उधर कर रहे हो, तो अल्टीमेट कुदरत क्या करेगी? परेशान हो जाएगी कि क्या करें। कोशिश वो करेगी फिर भी, इस जब तक जीवन है, जीवन स्ट्रांग है, तब तक ये अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेगी, घबराहट में हो जाएगी, इसको टॉयलेट टट्टी लगा देगी, डायरिया लगा देगी, जिसे वो निकले। अगर नहीं हुआ तो जब तक उसको वो अंदर से न्यूट्रलाइज नहीं कर लेती जो आपके अंदर गया था और उल्टी पैदा हुई थी, तब तक ये घबराहट, ये परेशानी आपके साथ बनी रहे। तो ये बात करके भी मैं आपको वही पहुंचाना चाहता हूं कि असल इस बॉडी का जो इंडिविजुअलाइजेशन करेक्टर है, जिस पे के बेस पर हमारा जीवन चलता है, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो फिर हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि अगर इस जीवन को चलाने वाली कोई इंडिविजुअल शख्सियत इस तरह की है जो इनविजिबल है, तो फिर हम दवाई भी उसी तरह की ही देने की कोशिश करेंगे। और इससे आगे अगर हम चलें, आपने देखा होगा कि एक आदमी शब्द पढ़ रहा है, एक आदमी बंसरी बजा रहा है, एक संगीत चल रहा है, कुछ लोग रोने लगते हैं, एक आदमी स्टेज पे खड़ा हुआ लेक्चर कर रहा है, और लेक्चर करते करते और वो लोग इतने जोश में आ जाते हैं, वो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। ये कहां असर हुआ? शरीर पे नहीं हुआ, किसी हायर लेवल पे हुआ, क्योंकि आपके शरीर के अंदर तो कुछ किया ही नहीं, आपके हायर लेवल पे कुछ ऐसा हुआ है। और वो हर आदमी का नहीं होगा, सभी के सभी वहां बैठे सुनने वाले संगीत सभी रोएंगे नहीं, सभी नहीं रोने लगे, और वो लेक्चर सुनने वाले लोग सभी के सभी किसी को मरने मारने पर उतारू नहीं हो जाएंगे। हर आदमी की फीलिंग उस पर इंडिविजुअल होगी। इसलिए मैं ये चाहता हूं कहना आप लोगों को कि आप लोग बीमारी के तौर पर भी समझें, आप लोग इस शरीर की बंटर के तौर पर भी समझें, तो ये महसूस करें कि इसके चलन के रुकावट के लिए जो भी इसके चलन, मतलब इसकी फिजियोलॉजी में, इसकी फिजियोलॉजी में अगर जो भी रुकावट आ रही है उसके पीछे या उसके लिए जिम्मेवार इसके ऊपर हायर स्टेज है। हाँ, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर कि भाई तो अगर चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, अब इसको अंदर का कहाँ करें भाई? नहीं, फिर भी वो वाइटलिटी ही जिम्मेवार है। मैं इसको फिर आपको समझाऊं कि अगर मुर्दे की टांग तोड़ दो, मुर्दा तो है ही, लिविंग बींग नहीं है अभी, उसकी टांग तोड़ दो तो उसमें कभी सूजन नहीं आएगी, कोई ब्लड भी नहीं निकलेगा, कोई उसको दर्द भी नहीं होगी, और जितने भी सिम्टम्स लिविंग बीइंग में उस एक्सीडेंट के पैदा होंगे, ये सब साबित करेंगे कि सम हायर पावर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बॉडी। ऐसा हो जी, तो मेरे कहने से मतलब कि हर हालात में ही वो एक बॉडी, वो एक चीज इनविजिबल जो है हमारे शरीर की, वो ही इफेक्टेड होती है, उस पर ही किसी बीमारी का इफेक्ट होता है। डॉक्टर हैरिंग हुए हैं मेडिकल साइंस में, तो डॉक्टर हैरिंग ने कहा कि अगर जरासीम ही बीमारी पैदा करने वाले हैं, तो लेट्स से उसने वो जो घोल था कॉलरा बेसिलस का, तो उसने पी लिया, तो कहता है मुझे कॉलरा हो जाना चाहिए ना, हैजा हो जाना चाहिए ना, नहीं हुआ। इसी तरह ही ये कौन रिस्पॉन्सिबल था कि मेरी वो वाइटलिटी इससे स्ट्रॉन्गर थी, उसका इफेक्ट नहीं हुआ। इसी तरह ही लोग मिसमेराइज करते हैं, क्योंकि मैं तो जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता था तो मैं तो बहुत सारे लोगों को मेडिकल मिसमेराइज करता था, हिप्नोटाइज करके बहुत सी बीमारियां मैं ठीक करता था। मेंटल रोग जो, मेंटल बीमारियां क्या है, शारीरिक तौर पे सब कुछ सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके हायर लेवल पे कुछ ऐसे डिफेक्ट आ गए हैं, उस हायर लेवल के इफेक्ट से बाद में ऐसा हो सकता है सेकेंडरी कि भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, कुछ ऐसे आ जाते हैं, लेकिन इफेक्ट जो है वो हायर लेवल पे ही है। और मैंने इस तरह के बहुत सारे केसेस ठीक किए हैं जिनको हिप्नोटाइज करके भी हम लोग दुरुस्त करते थे, और वो अभी तक जिंदा हैं, वो अभी तक ठीक ठाक हैं, अभी तक उनको कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये वंडरफुल इफेक्ट था, क्योंकि हमने उसकी वाइटलिटी को, जो असल में रिस्पॉन्सिबल पार्टी थी इस शरीर के जीवन की चलन की, उसको स्ट्रॉन्ग किया था। और ये भी एक ऐसा प्रोसेस है ये साबित करने के लिए कि अगर हम उस इंडिविजुअल पावर तक अप्रोच करने के काबिल हो जाएं, चाहे मेडिसिन से, چاہے ہپنوٹزم سے. تو ہم بہت سی بیماریاں جو اس کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں, اس میں آئے ہوئے وقار کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں, وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں. اور اسی لیے ہی ہم لوگ انڈیویجولائزیشن پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں. ہومیوپیتھک طور پہ ماڈرن میڈیکل سائنس جو ہے, جو کیول فزیکل تک اپنا لیول رکھتی ہے, اس تک اگر کرتے ہیں تو پھر ہم سیل تک رہ جاتے ہیں. اور اس کی پریبھاشا بھی میں نے آپ سوالوں کو پہنچا دی تھی کہ بھائی یہ ایک لیول ہے, لیکن اس لیول کے لیے پاؤ سیل میں جتنے بھی چینجز آ رہی ہیں, جس کو ہم آگے پیتھالوجی بولتے ہیں, ان سب چینجز کے لیے بھی ریسپانسبلٹی اس ہائر وائٹل پاور کی ہے. اور اس کی ایگزامپل میں نے آپ سب کے سامنے رکھی تھی کہ جتنے بھی ڈاکٹر لوگ ہاسپٹلوں میں کام کرتے ہیں, مان لیا جائے ٹی بی کے وارڈ میں کام کرتے ہیں, سبھی کو ٹی بی تو نہیں ہو جاتی. جتنی بھی نرسیں ہیں سبھی کو ٹی بی تو نہیں ہو جاتی. یا میں نے ایگزامپل آپ کے سامنے رکھی تھی یہ کووڈ 19 کی, تو کووڈ 19 جو تھا سبھی کو تو نہیں ہوا, سبھی نے ویکسین پروٹیکشن بھی نہیں لی, سبھی مار تو نہیں گئے, حالانکہ بہت سارے لوگ مر گئے اس وقت. کووڈ 19 جب شروع ہوا تھا بہت سارے لوگ مر گئے. اسی طرح ہی بہت سی چیزوں, جب جتنی بھی مار, ایون انفلوئنزا بھی جب مہاماری کے طور پہ آیا تھا تو اس وقت ہزاروں لوگ کووڈ کی طرح مر گئے تھے اسی طرح. اور آہستہ آہستہ کوئی بھی بیماری اگر آتی ہے ہماری خود کی جیون, جب میڈیکل سائنس نہیں تھی تب بھی تو لوگ زندہ رہتے تھے نا, تب بھی ان کو بیماریاں ہوتی تھی, بے شک بہت سارے لوگ مر جاتے تھے, ریکارڈ ہیں ہمارے پاس, لیکن یہ بھی ریکارڈ ہونا چاہیے ساتھ میں کہ بہت سے لوگ بچ گئے تھے, بچ جاتے ہیں, اسی لیے ہم ابھی تک زندہ ہیں, ان کی جنریشن ہم آگے چل رہے ہیں. تو میرے کہنے سے مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ فزیکل سے اوپر بھی کوئی ایسی چیز ہے جو ہر چیز کے لیے ریسپانسیبل ہے. شریر کی ہر ایکٹیویٹی, چاہے تندرستی کی ہو چاہے ہے بیماری کی ہو, ان سب کے لیے ریسپانسیبل پارٹی وہی ہے. اور اسی طرح ہی دوسرا فیز اس چیز کا, یہ ایک فیز میں نے آپ کو سب بتا دیا کہ بیماری یا تندرستی اس شریر کی, بے شک مٹیریلسٹک ہوتے ہوئے ہم لوگ صرف ٹیشو چینج دیکھتے ہیں, ہم لوگ سب سیل میں آئی ہوئی چینجز ہی دیکھتے ہیں, لیکن اس کی آئی ہوئی سبھی چینجز کے لیے, سب سے چھوٹی بات تو سیل ہے نا, سیل میں چینجز دیکھتے ہیں, لیکن ان سب کے لیے بھی ریسپانسیبل پارٹی ہماری کون ہے, وائٹلٹی ہے. اور اس کا دوسرا پکھ, دوسرا فیز میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا دوائیوں کے بارے میں. ہمارے پاس سب سے بڑی بات تو یہی ہے نا کہ بیمار آ گیا اس کو ہم دوائی دیتے ہیں. اب جو دوائی دیتے ہیں تو دوائی دینے کے پیچھے اگر ہم باریکی سے کھوج کرتے ہیں نا, تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ دوائی کے اندر بھی ایک انڈیویجول کریکٹر ہے, اور اس انڈیویجول کریکٹر کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ ہم دوائی کہتے کس کو ہیں. اب بازار میں کوئی چیز آپ لے آئے تو وہ سبسٹانس ہے, ویجیٹیبل سمجھ لو. میں نے گروپ بتایا تھا آپ سب لوگوں کو کہ بھائی ابھی ہم لوگوں نے جو قدرت نے دیا ہوا ہمارا بازار ہے نا دوائیوں کا, جسے ہم دوائیاں بناتے ہیں, چاہے وہ ایلوپیتھک ہے چاہے آیورویدک ہے چاہے ہومیوپیتھک ہے چاہے کسی بھی سائنس والے جو دوائیاں بناتے ہیں ان کے گروپ ہیں, جتنے بھی بنسپتی سے دوائیاں بناتے ہیں ان سب کو ہم بولتے ہیں ویجیٹیبل گروپ, اور جتنے بھی منرلز ہیں اس برہمانڈ میں ان سے ہم دوائیاں بناتے ہیں تو ان کو ہم منرل کنگڈم بولتے ہیں. اسی طرح ہی شریر کے جو لیونگ سیکریشنز ہیں, سیکریشن اور ایکسکریشن کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیکریشن تو وہ ہے جو باڈی کے اندر سے تندرست ہیلدی تندرست ٹیشو سے نکلتا ہے, ایکسکریشن وہ ہے جو ویسٹ کے طور پہ شریر سے نکالا جاتا ہے, جیسے پیشاب وغیرہ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں. اسی طرح اندر کے جیسے تھائرائڈ ہارمون ہے, پیچوٹری ہارمون ہے, اور الگ الگ ہارمونز ہیں, اس طرح کے الگ الگ سیکریشنز ہیں جن سے ہم دوائیاں بناتے ہیں, اور جو لیونگ بینگ سے دوائیاں بناتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں سار کوڈز. اور جو بیمار چیزیں ہیں اور ان کا جو ایکسکریشن ہے, ایکسکریشن سے جیسے سپیوٹم ہے, ٹیوبرکلوسس کی سپیوٹم ہے, اور اس سب سے بھی ابھی چیزیں بنتی ہیں ان کو ہم بولتے ہیں نوزولز. اسی طرح بیماریوں, اس کے علاوہ بھی ایک میں نے گروپ آپ کو بتایا تھا جو ابھی ہیومن بینگ کی جانکاری میں جس کو ہم بولتے تھے امپاؤنڈیرا بھی دیا, उसे भी हम दवाइयां बुलाते हैं शक्ति, जैसे एक्सरे है, जैसे सन रेज है, जैसे मून रेज है, इस तरह की अलग अलग तरह की चीजें रेज हैं जिनका पता है हमें कि अगर हमारे शरीर में उनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है तो हमारे शरीर में किस तरह की तब्दीलियां आ सकती हैं। जैसे धूप में चले जाओ ना तो वो बोलते हैं सनस्क्रीन लगाकर लगा जाओ, ऐसे नहीं जाओ जी, क्यों बोलते हैं, इसीलिए कि उससे इफेक्ट होते हैं ना। तो इसी तरह ही जितने भी हमने इस तरह के चीजें निकाली उनको हम बोलते हैं इम्पाउंडेरा बीडिया। अब इस सारी कहानी के पीछे हम चीज क्या, अभेज तो अब दिखाई नहीं देते ना, दवाई तो दिखाई देती है ना कि ये मैंने कुनीन से बना ली है, ये मैंने पेंसिल बना ली है, ये मैंने टेट्रासाइक्लिन बना लिया, ये तो मटेरियल आप देख रहे हैं ना। इसी तरह ओपियम की बात है, मैंने ओपियम की एग्जांपल ज्यादा रखी थी क्योंकि सभी लोग आसानी से समझता है, कोस सभी लोग समझते हैं, अफीम सभी लोग समझते हैं, तो मैं आसानी वाली वो एग्जांपल आपके सामने रखी थी कि भाई पहली तो बात ये है कि कोई सब्सटेंस आपने बाजार से ले लिया, वो एक वेजिटेबल है या वो एक मिनरल है या कुछ भी है। अब जब उसे हम दवाई बनाते हैं तो फिर हम उसको बोलना शुरू कर देते हैं ये मेडिसिनल सब्सटेंस है, इससे दवाई बनती है। और उसके बाद फिर जो दवाई बन जाती है तो सवाल पैदा होता है कि दवाई कहते किसको है। हम दवाई उसको बोलते हैं कि भाई किसी भी सब्सटेंस का हमारी बॉडी के साथ क्या संबंध है, या हमारी बॉडी के नॉर्मल चलन को कोई सब्सटेंस कैसे तब्दील करता है, कैसे इफेक्ट करता है। जैसे वो लेक्चर करने वाली बात मैंने आपको बताई थी, उसी तरह ही इसका मतलब ये हुआ, मैं वही लाना चाहता हूं आपको, कि किसी भी सब्सटेंस का हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट होता है उसको हम उस दवाई का इफेक्ट समझते हैं। और जब हम इसकी बारीकी से खोज करते हैं तो हम, वैसे साइंसों की बात तो मैंने लंबी हो गई कि भाई ये अगर नेचुरल फॉर्म में इसको इस्तेमाल कर लिया तो उसको हम बोलते हैं आयुर्वेदिक, और ये नेचुरल फार्म वही पोस्ट वही अफीम है, उससे पैथोजी मार्फिन निकाल दिया तो हम बोलते हैं ये एलोपैथिक हो गया। अगर इससे भी ऊपर अब जाएंगे तो एक्चुअली क्या है, हर एक सब्सटेंस में जो चीज हमारे शरीर को इफेक्ट करती है ना, किसी भी दवाई की, किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी ग्रुप की, तो उसको हम उसका बोलते हैं एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स। अफीम ये पोस्ट के अंदर क्या है जो हमारे शरीर को इफेक्ट करता है, वो मटीरियल पोस्ट की बात नहीं कर रहे हम, इसके अंदर कुछ ऐसी पावर होगी ना जिस जो हमारे शरीर को इफेक्ट करती है। फिजिकल लेवल पे इफेक्ट करना ड्राइनेस पैदा करेगी, फिजिकल लेवल पे कोई नशा वगैरह करते हो तो जो सुरूर जो जिसको हम बोलते हैं वो हर लेवल पे है। बॉडीली चेंजेस क्या है, अफीम खाइए कबल हो गई है, अफीम खाई एकदम चुस्ती फुर्ती हो गई है, फिजिकल लेवल पे जो उसका इफेक्ट हुआ ये हुआ, लेकिन हायर लेवल पे भी इसके कुछ इफेक्ट होंगे। और इसी तरह ही हर सब्सटेंस का जो हमारी बॉडी पे इफेक्ट होता है, बॉडी ना कहें हमारे लाइफ पे जो इफेक्ट करना है ये कहना चाहिए, ये ज्यादा दुरुस्त लफ्ज होगा, और उसको हम बोलते हैं एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स। और जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स है ना वो हर सब्सटेंस का अपना अपना वक्रा है, वो इंडिविजुअल है, वो किसी से मैच नहीं करता, अलग होता है। इसकी एग्जांपल भी मैंने आप सब के सामने पहले प्रोग्रामों में रखी थी कि जैसे सुहागा है बोरेक्स ग्राम, जैसे चीनी है मीठी है, साल्ट लून है, सोडियम क्लोराइड ये भी वाइट है, सभी चीजें तो वाइट है, फटकरी है वो वाइट है, और लेकिन इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो छोटी छोटी क्लासों में हम पढ़ते थे ना, लो चून का मिश्रण अलग करो जी, कैसे करोगे जी। तो इसी तरह ही ये सब चीजें आ गई पूरी पीस कर रखी हुई हैं, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, कुछ फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स हम करेंगे, कुछ केमिकल एक्सपेरिमेंट्स आप करेंगे, बहुत सारे सब्सटेंसों के लिए फिजिकल केमिकल एक्सपेरिमेंट्स में फिर कुछ ऐसे सब्सटेंस आ जाएंगे जो एक दूसरे के साथ सिमिलर दिखाई देंगे, यार इसको क्या करें। तो अल्टीमेट जो साइंस है नॉट मेडिकल, कल ही साइंस ने ये इसका डिस्कर्स निकाला, ये नतीजा निकाला कि एक और तरीका कार है जिसको हम लोग बोलते हैं थेराप्यूटिक वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन। मैं वाइटलिटी पे जाना चाहता हूँ, याद ये रखना कि हमारा असल पॉइंट वो है कि वाइटलिटी पर पहुंचने के लिए हम ये कह रहे हैं कि सभी फिजिकल भौतिक सभी केमिकल रासायनिक जितने भी एक्सपेरिमेंट हमने कर लिए उसके बाद ये कुछ सब्सटेंस ऐसे लगे कि यार इनकी रिएक्शन भी वैसी ही है, इसका दिखने का ये इधर उधर का ये सब एक ही तरह है। तो फिर उसके बाद एक वे आउट निकाला गया कि हाउ इट इफेक्ट्स द ह्यूमन बॉडी। कोई भी चीज किसी अगर फटकरी नमक से अलग है, अगर फटकरी सुहागे से अलग है तो क्यों अलग है? तो उसको जो भी सब्सटेंस हम दवाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उन चीज का जो इफेक्ट है हमारी बॉडी पे वो हर आदमी पे इंडिविजुअल होगा। जो पहली बात मैंने पॉट्स की आपके सामने की थी कि हरेक पॉट में अलग अलग रंग है, ये साबित करने के लिए कि हर बंदा इंडिविजुअल है और उसमें एक ही तरह का रंग हमने मिलाना शुरू किया, बोरक्स दिया, फटकरी दी, साल्ट दिया, तो हर चीज जो है हमारे शरीर को इंडिविजुअल तौर पे अलग तौर पे इफेक्ट करेगी। फटकरी की तरह लून नहीं करेगा, नमक की तरह गोरक्स नहीं करेगा, ये चीजें अलग अलग तौर पे हमारे शरीर पे असर करेगी। और असर कहने का मतलब ये नहीं है कि केवल फिजिकल शरीर पे, असर ये है कि आपकी फीलिंग्स में तब्दीली आ जाएगी, आपकी डिजायर एवर्शन में तब्दीली आ जाएगी। तो ये क्या था जिसको हमने कहा एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स, एंड दोज एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स आर नॉट विजिबल किसी भी चीज की। वो जो माइन्यूट पावर है, जैसे मैं हिप्नोटाइज की बात कर रहा था, वो जो माइन्यूट पावर है जो हमारे उस वाइटलिटी पे जो इनविजिबल पावर है उस पे इफेक्ट करते हैं। इसीलिए ही दवाइयां का मटीरियल योग जो है उसका लेवल जो है हमारी फिजिकल बॉडी पे होता है, उसके जो इफेक्ट बाद में पैदा होने वाले हैं वो हमारी वाइटलिटी से पैदा होते हैं कि ड्राइनेस हो गई है जी, अभी खाई थी ड्राइनेस हो गई, अब तो कब्ज हो गई है। इस तरह के जितने भी सिम्टम हमारे पैदा होते हैं फिजिकल लेवल पे जो अफीम ने चेंज कर दिया सभी लोग जानते हैं। फिजिकल लेवल पे आपने कोई नशा खा लिया जो शरीर में पैदा होता है वो आप सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद जो पैदा होने वाले इफेक्ट होते हैं वो ये हैं कि आपकी चीज का इफेक्ट ब्रेन तक गया, ब्रेन ने डीकोड करके हायर लेवल तक वाइटलिटी तक पहुंचाया, अब वाइटलिटी क्या फील कर रही है वो आपके सामने आ जाएगा। तो अगर हम वो जानना चाहें, अगर वो हम समझ जाएं कि हरेक दवाई का ही एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है, तो फिर अगर उस एक्टिव कंस्टिट्यूएंट की परिभाषा मींस सिम्टम्स हाउ इट इफेक्ट्स अवर बॉडी, हमारे शरीर को वो कैसे असर करती है, अगर वो हम जान लेंगे, वो जानेंगे तो तभी ना लिविंग बींग जीवन है बंदा, उस जीवित बंदे को देंगे तभी पता चलेगा। तो अगर हम ये एक्सपेरिमेंट्स बजाय गिनी पिग पे, बजाय लोअर एनिमल्स पे टेस्ट करने के बजाय अगर हम लोग यही लिविंग बींग लिविंग ह्यूमन करेंगे तो फिर हमें उनके वो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स पता लग जाएंगे जो बिल्कुल एक दूसरे से इंडिविजुअल होंगे, और जो जिनका जो करेक्टर है वो उसका इंडिविजुअल करेक्टर होगा कि ये रंग हमने पॉट में मिक्स किया तो असल इसका करेक्टरिस्टिक क्या था और असल इसने हमारे जीवन पे कैसे इफेक्ट किया अलग अलग लोगों में। अलग मैं सवाल और आसान कर दूं, कुनीन आप सभी लोगों को दे दें, कुनीन का आप सारे सभी समझते हो ना, कुनीन आप तीन चार आदमी को अलग अलग दे दो, अगर फील करोगे कि जो उसके फिजिकल सिम्टम हैं वो तो सभी में एक तरह के आएंगे लेकिन उसके जो हायर लेवल के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट इफेक्ट हैं फीलिंग डिजायर अवर्शन कुनीन खाने के बाद वो सबका वक्षा अलग अलग होगा। तो अगर हम हर बीमारी में हर एक दवाई को इस्तेमाल करते हुए उसके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को साथ में ले लें या ये समझ लें और एक्टिव भूल जाए बीमारी को, भूल जाए शरीर को कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुई, ओ कैंसर हो गया, इतना बड़ा कोड़ा हो गया, ये कैसे करेगा, कैसे ठीक होगा, या बहुत बड़ी चीजें जो डेवलपमेंट हुई है बॉडी में वो हम देख लेते वो कैसे ठीक होगी तो हमारे लिए परेशानी हो जाती, फिर हम सर्जरी की तरफ दौड़ते हैं या काटो इस गुफा को। पर जिस चीज ने वो चीज पैदा की है जो डाइवर्टेड है, जो चीज है फिजियोलॉजी से पैथोलॉजी में आ गई है और उसको हम काट कर फेंकेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने बीमारी को रूट आउट कर दिया, क्योंकि वो हायर लेवल से शुरू हुई थी। उस हायर लेवल को अगर आप समझ के ठीक करना शुरू करेंगे तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे 52 साल के एक्सपीरियंस में बहुत सी चीजें ऐसी आई हैं जिनको हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे कि ऐसा हो सकता है और वो हुई है। क्योंकि हर बंदा एक्सपेरिमेंट, हर बंदा नए नए तौर पे अपनी जिंदगी में एक्सपेरिमेंट करता है। ठीक है, डॉक्टरों की किताबें हम लोग पढ़ते हैं, पुराना जो एक्सपेरिमेंट हुए वो पढ़ते हैं, उसी के आधार पे फिर हम लोग आगे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो पता चलता है कि नहीं ऐसा होता है। सो बड़ी बड़ी चीजें जिनको हम सर्जरी से काट रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें उस वाइटलिटी के या किसी दवाई के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को मिलाने से कुदरत क्या चाहती है, ट्यूमर बना दिया ना किसी जगह, कुदरत क्या चाहती है कि ये ट्यूमर किस तरह बना है उस चीज को इरेडिकेट किया जाए और वहां से हुआ है, डेड बॉडी को ट्यूमर नहीं होगा ना। तो लिविंग बीइंग ने आपको बताया, जैसे उल्टी की साधारण सी बात थी ना, उल्टी क्यों पैदा होती है, इसलिए पैदा होती है कि या तो एक्सोटॉक्सिन है कि बाहर से हमने कुछ चीज दे दी शरीर में जो शरीर को जो वाइटलिटी को सेट नहीं बैठी वो इसको निकालना चाहती है, या इंडोटॉक्सिन है कि शरीर के अंदर के आजाम जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें कोई डिफेक्ट पैदा हो गया है और वो जो डिफेक्ट पैदा हो गया है जिंदगी में एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, डॉक्टरों की किताबें हम लोग पढ़ते हैं, पुराना जो एक्सपेरिमेंट हुए वो पढ़ते हैं, उसी के आधार पे फिर हम लोग आगे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो पता चलता है कि नहीं ऐसा होता है। सो बड़ी बड़ी चीजें जिनको हम सर्जरी से काट रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें उस वाइटलिटी के या किसी दवाई के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को मिलाने से कुदरत क्या चाहती है, ट्यूमर बना दिया ना किसी जगह, कुदरत क्या चाहती है कि ये ट्यूमर किस तरह बना है उस चीज को इरेडिकेट किया जाए और वहां से हुआ है, डेड बॉडी को ट्यूमर नहीं होगा ना। तो लिविंग बीइंग ने आपको बताया, जैसे उल्टी की साधारण सी बात थी ना, उल्टी क्यों पैदा होती है, इसलिए पैदा होती है कि या तो एक्सोटॉक्सिन है कि बाहर से हमने कुछ चीज दे दी शरीर में जो शरीर को जो वाइटलिटी को सेट नहीं बैठी वो इसको निकालना चाहती है, या इंडोटॉक्सिन है कि शरीर के अंदर के आजाम जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें कोई डिफेक्ट पैदा हो गया है और वो जो डिफेक्ट पैदा हो गया है उसको कुदरत किसी तरह ठीक करने की

साधारण सी बात थी ना, उल्टी क्यों पैदा होती है? इसलिए पैदा होती है कि या तो एक्सोटॉक्सिन है कि बाहर से हमने कुछ चीज दे दी शरीर में जो शरीर को जो हमारी क्रीटी को सेट नहीं बैठी वो इसको निकालना चाहती है, या इंडोटॉक्सिन है कि शरीर के अंदर के आजाम जितने भी ऑर्गेन्स हैं उनमें कोई डिफेक्ट पैदा हो गया है और वो जो डिफेक्ट पैदा हो गया है उसको कुदरत किसी तरह ठीक करने की कोशिश करती है और आपको सिम्टम के जरिए बताना चाहती है कि ये चीज है। अब इस उल्टी को तो वह उससे नहीं न मिलाएंगे, अगर कोई गलत चीज खा ली तो उल्टी आई है, ये समझना आपका काम है कि ये एक्सोटॉक्सिन नहीं है कि आप कहेंगे भाई तुमने ये खा लिया था अब नहीं खाना, ठीक हो जाएगी। लेकिन जो अंदर के अंग खराब हो गए या कुछ ऐसा हो गया जिसका मतलब बहुत लंबे समय से कोई चीज चल रही थी उसकी वजह से किडनी फेल हो गई है, अब यूरिक एसिड बढ़ गया है, अब उसके हिसाब से वोमिटिंग आ रही है, तो वो तो उससे ठीक नहीं ना होगी, तब तक नहीं ठीक होगी जब तक वो चीज अंदर से जो किडनी वाली है वो ठीक नहीं होगी। अब वो कैसे ठीक होगी, अब उसको फिजिकल तौर पे हम समझेंगे तो फिर हम सर्जरी तक पहुंचेंगे, निकालो इसकी किडनी, दो है कोई बात नहीं एक से चल जाएगा, यही कुछ हम कर रहे हैं। लेकिन ये वेरीफाइड फैक्ट है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये वेरीफाइड फैक्ट है कि अगर आप उस वाइटलिटी की परिभाषा समझ जाएं तो उसको क्या चाहिए उन सिम्टम के बेस पर वो आपको बता रही है जैसे उल्टी की बात बता रही थी, तो इस तरह की जितनी भी बीमारियां हैं वो सब ठीक हो सकती हैं, बहुत शॉर्ट टाइम में ठीक हो सकती है। मैंने आपको कई बार एग्जाम्पलें दी हैं, यहाँ लोकल अमेरिका की एग्जाम्पलें दी हैं, ब्रेन ट्यूमर कैंसर के मैलिग्नेंट हो गए जिनके एक एक दो दो बार सर्जरी भी हो गई, वो लोग भी ठीक हुए हैं, वो लोग भी ठीक हुए हैं। क्यों ठीक हुए हैं कि हमने उसके एसेंस की मैच की, क्या दे रहे हैं हम, हमने उसकी वाइटलिटी के जो सिम्टम्स थे ये तो एक्सरे ने बता दिया कि भाई इसके ब्रेन में ट्यूमर है, पैथोलॉजी है, चेंज है, सब कुछ हो गया है। अब डॉक्टर लोग जो सर्जरी करने वाले भी, मैंने आपको बताया था कि सर्जरी भी हो चुकी, दो बार भी सर्जरी हो चुकी, फिर दोबारा इरप्ट हो गया, तो क्या हो गया, मतलब हम लोग जो कर रहे थे वो ये था कि बिल्ली तो आ रही है, कबूतर बोलता हम आंखें बंद कर लेते हैं, ये दिखाई ही ना दे हमें, वो हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये समझें इंडिविजुअल करेक्टर कि वो वाइटलिटी जो इसके अंदर जिंदा है, जिसने ये ट्यूमर पैदा कर दिया है, जिसको हम आज मैलिग्नेंट कह रहे हैं, एकदम तो मैलिग्नेंट नहीं हुआ है ना, और वो एक भाषा में आपको बता रही है, अगर आप वो भाषा समझ रहे हैं, इंडिविजुअल फीलिंग डिजायर अवर्शन अगर आप समझ रहे हैं, और फिर उसको उस दवाई के जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं, क्योंकि अब तो हमारे पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो गए ना जिससे हम एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स जानते हैं। अब जब हैनीमैन ने ये काम शुरू किया था तो उसने सिर्फ 24 मेडिकेशंस का एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स प्रूव किया था, एक्सपेरिमेंट के तौर पे लोगों के ऊपर प्रूव किया था। अब तो हमारे पास 3000 से भी ऊपर मेडिसिन है और उनके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हम जानते हैं, और अगर कंस्टिट्यूएंट्स को जानकर ही मैच करके के क्या डिजायर है, कि वाइटलिटी क्या चाहती है, अगर उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसी तरह की उसको हेल्प दी जाएगी, तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। ये बात अलग है कि कुछ बीमारियों में ऐसा होता है कि हमें या तो दर्द तकलीफ या उम्र क्षमा नहीं देती, अलाउ नहीं करती कि भाई अब इसको वाइटलिटी को ठीक करते करते किसी चीज को तो लगेंगे 6 महीने, अब जीवन इतना समय नहीं देता या तकलीफ इतना समय नहीं देती, तो फिर हम क्या करते हैं, नहीं ये तरीका ठीक नहीं, वो जल्दी वाला ठीक कर देते हैं, तो वो जल्दी वाला टीका करते हैं लेकिन फिर दोबारा इरप्शन होना शुरू हो जाता है, फिर दोबारा वही चीजें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमने असल उसका निवारण नहीं किया होता, और जब तक हम असल निवारण नहीं करेंगे वही बीमारियां बार बार आपके सामने आती रहेंगी, बार बार आपका उसी तरह का उपचार होता रहेगा और ये एक सिलसिला उसी तरह चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। समझने की जानने की जरूरत हमें ये है कि हमें दवाइयों के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स जानने हैं, और हमें वो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है ना, वो भी उनकी भी वही परिभाषा है जो हमारी वाइटलिटी की परिभाषा है, उसको दवाई को देने के बाद शारीरिक सिम्टम

0: भी आप देखते हैं, मेंटल सिम्टम भी आप देखते हैं। मेंटल कहाँ से है? उस सोसाइटी से है, क्या फील करते हैं आप? तो इस मैंने आपको समा थोड़ा रह गया, मैं आपको याद करा दूं कि मैं हॉस्पिटल में इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए कि हमने सिम्टम आपके ले लिए। ये ध्यान से सुनने वाली बात है कि मैंने आपके सिम्टम्स ले लिए, सिर्फ मेंटल सिम्टम क्या, आपकी मेंटल फैकल्टी क्या बोलती, वाइटलिटी आपकी क्या, फिजिकल सिम्टम बीमारी आपको कुछ भी थी, आप पेट दर्द कह रहे थे या रसौली कह रहे थे, आपको उसको एक तरफ रख दीजिए। मैंने आपके मेंटल सिम्टम का आपकी वो बोली जो आपकी वाइटलिटी बोल रही है, मेरा जी कैसा हो रहा है, मेरा ऐसा हो रहा है, ये वो वाइटलिटी के सिम्टम्स हैं। सो मेरा मन नहीं करता, नींद नहीं आती है, मेरे भूख नहीं लगती, मेरा बात करने को मन नहीं करता, ये वो वाइटलिटी के सिम्टम्स हैं। तो मैंने उनको देखा, उसके बाद उसी आदमी का एक बाल मैंने दिया। ये एक बार नहीं किया मैंने, बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया, और आप लोग भी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जितने भी सुन रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट ये कर सकते हैं। एक बाल लिया, रूट आउट किया रूट से, और वही दवाई जो मैं समझता था कि इसकी वाइटलिटी के मुताबिक है, उसको हमने अपनी तली के ऊपर रखा, हाथ के ऊपर, और वही जो बाल था उसके साथ चुहाया। वो पेशेंट जो था मेरे टेबल के, मेरी कुर्सी, मेरा टेबल, टेबल के दूसरी तरफ चेयर पर बैठा हुआ था, और अल्टीमेट आफ्टर सम टाइम्स उसी ने वही सिम्टम मुझे बताने शुरू कर दिए जो सिम्टम उस मेडिकेशन के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के थे। कोई वाइब्रेशन इस तरह भी होती है, तो इसका मतलब ये क्या है, तब तक इस पर विश्वास नहीं हो जाता जब तक आप इस तरह का एक्सपेरिमेंट खुद नहीं करते, तब तक आपको हिप्नोटाइज पर भी विश्वास नहीं होगा, जब तक आप खुद इस चीज को नहीं करते, तब तक आपको ये जो होम्योपैथिक सिद्धांत है या इसकी दवाइयां जो वाइटलिटी के तौर पे, पावर के तौर पे हम देते हैं, पावर का मतलब एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स मीन्स जो आपकी वाइटलिटी के तौर पे, क्योंकि नमक हवा में नहीं घोला जा सकता, ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन घुला जब ये अमोनिया गंध उसमें आनी शुरू हुई तो साबित ये होगा कि ये घुल गया उसमें। जब आप वो समझना शुरू करेंगे, हर बीमारी में, हर इंडिविजुअल बंदे में उसकी जो डिजायर वर्शन फीलिंग्स दिखना शुरू करेंगे, तो हमारे पास तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है ना भाई, अब तो मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा रिकॉर्ड आ गया कि हम हर चीज को उसका क्या इफेक्ट हमारी वाइटलिटी पे हुआ, नोट इवन एलोपैथिक स्टाइल में भी, बेशक उसको रिकॉग्नाइज करें या ना करें, लेकिन हर दवाई चाहे पेंसिलिन दो, टेट्रासाइक्लिन दो, क्लोरोफेनिकल कुछ भी दो, लेकिन उसके बाद शरीर के इफेक्ट के बाद अगर हायर लेवल पे आप देखना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी वाइटलिटी इस दवाई को खाने के बाद क्या कह रही है। और यही उसके फर्स्ट जो इम्प्रेशन है वाइटलिटी के ऊपर, वही उसके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के इफेक्ट हैं। यानी मैंने तो क्विनीन के साथ शुरू किया था ना, कि क्विनीन देनी शुरू की और उसके बाद देखा कि इसके पास कैसे सिम्टम पैदा होते हैं। मलेरिया वाले सिम्टम तो पैदा हो गए, वो फिजिकल एक्सप्लेनेशन था कि भाई क्विनीन, इसका मतलब क्विनीन मलेरिया भी पैदा कर सकती है। जो आदमी किसी को कुर्सी पे बिठा सकता है वो उसको कुर्सी से उठा भी सकता है, दोनों की पावर बराबर है। ये तो वो एक्सपेरिमेंट था, लेकिन उसके बाद ऐसा था कि इस बंदे में इंडिविजुअल फीलिंग क्या पैदा हुई, जहां से उसने कहा कि नहीं, सभी मलेरिया के केसेस के लिए क्विनीन ठीक नहीं है, फिजिकल लेवल पे तो ठीक है लेकिन सभी पेशेंट्स के लिए क्विनीन ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक या इसका क्विनीन का जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स है वो उस पर मैच नहीं करता। तो इस तरह हम मेडिकल साइंस के इस इंडिविजुअल कैरेक्टर को अगर अपना लें, अगर सिर्फ यही देखना शुरू करें, हर बीमारी में ये ठीक है, टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत देर वाला काम है, ये कौन करेगा, क्योंकि अगर आपको क्योर की परिभाषा का पता हो ना, तो फिर आप ये समझेंगे कि टेम्परेरी सप्रेस करना, टेम्परेरी सिम्टम्स को रिलीव करना आपकी डिमांड हो सकती है। अगर कोई चीज अनबियरेबल है तो उसको टेम्परेरी तौर पे आप मैनेज कर सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप उसको इरेडिकेट करना चाहते हो परमानेंटली, तो फिर आपको हल वहीं से करना होगा, वहीं से ये ठीक होगा, टेम्परेरी सफाइस करने। हाँ, ये बात मैंने आपको पहले बोल दी कि कई बार ऐसा होता है कि हम पेन बर्दाश्त नहीं करते, और उस पेन के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और हम लोग ने क्या किया है, अब जितने भी इस तरह के लोग हैं जो पेन को मैनेज कर रहे हैं या जो टेम्परेरी वक्ती तौर पे ज्यादा तकलीफ दे तकलीफ है उसको मैनेज करते हैं, उसको हमने बोल दिया एलोपैथिक। सबस्टांस वही हैं जो कुदरत ने हमें दिए हैं, उन्हीं से उनको दवाई बनानी है, उन्हीं से हरेक सिस्टम वाले को दवाई बनानी है, लेकिन हमने उसकी डिवीजन बना दी कि जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को किस रूप में, जो एक ड्रग सब्सटेंस की जो पावर है, हाउ इट इफेक्ट्स द ह्यूमन बॉडी, वो जो पावर है उसको ये किस तरह इस्तेमाल करते हैं, फिजिकल रूप में इस्तेमाल करते हैं या उससे माइन्यूट रूप में इस्तेमाल करते हैं। अफीम खा ली या पोस्ट खा लिया तो हम बोलते हैं तो आयुर्वेदिक दवाई है, और मैं मॉर्फिन पैथेडीन निकाल दी तो फिर हम ये समझते हैं कि नहीं ये तो एलोपैथिक दवाई है। और अगर मॉर्फिन पैथेडीन से हम उसके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट से भी ऊपर जाते हैं तो इफेक्ट उसके वही रहेंगे जिसके एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। हरेक दवाई जितनी भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनके इस तरह के इफेक्ट्स महसूस हो चुके हैं, रिकॉर्डेड हैं कि ये ऐसी करते हैं। और अगर उन्हीं रिकॉर्डेड के बेस पर भी हम किसी का ट्रीटमेंट करना शुरू करें और उसी रिकॉर्डेड बेस पर ही हम किसी बीमारी की डायग्नोसिस करनी शुरू करें, किसी इंडिविजुअल पेशेंट की डायग्नोसिस करने, वो बीमारी का डायग्नोसिस नहीं होगा, वो इंडिविजुअल का डायग्नोसिस होगा। अगर बीमारी को छोड़कर बीमारी का नामकरण तो हम कुछ एक सिम्टम से लेते हैं ना, वी टेक फ्यू सिम्टम्स इन टू कॉन्सिडरेशन टू डायग्नोस डिजीज, बाकी शरीर को हम छोड़ देते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर हम वाइटलिटी के इंडिविजुअल सिम्टम्स लेकर उसके बेस पे ही ट्रीटमेंट करना शुरू करेंगे तो ये सबसे ज्यादा जल्दी फास्ट किसी भी बीमारी को इरेडिकेट करने का हमारा तरीकाकार होगा। तो आज का समा मेरा समाप्त। मैं गुरदीप सिंह संधू आपका होम्योपैथी कंसल्टेंट आपकी सेवा में हाजिर हूं, 9701 सेरा एन कोर्ट डबलन कैलिफोर्निया 94568, फोन नंबर 408-687-1899। किसी भी वक्त किसी बीमारी से जूझ रहे हो, ट्रीटमेंट करवाते थक गए हो तो सेकंड ओपिनियन लेने के लिए कोई फीस नहीं है कंसल्टेशन की। सेकंड ओपिनियन लेने के लिए आप मेरे से कॉल कर सकते हो 408-687-1899। और अगर आप होम्योपैथी के साइंटिफिक तरीके से इलाज करवाना चाहते हैं, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के आधार पे ये करवाना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 408-687-1899। जाते जाते ये गुजारिश फिर आपसे करता हूं कि भाई अगर इन प्रोग्रामों में आपको कोई लगे कि भाई जानकारी की बात है, अच्छी है, हमारे लिए फायदेमंद है तो ये बात और लोगों तक भी पहुंचाएं। वो मेरे साथ फेसबुक पे फ्रेंडशिप में आ सकते हैं, वो यूट्यूब मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो सबरंग रेडियो स्टेशन में आ सकते हैं, वो रेडियो प्रवास में आ सकते हैं, कहीं भी आप रोजाना इन प्रोग्रामों को 5 to 6 PM कैलिफोर्निया पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक आप सुन सकते हैं। और हम लोग जीवन की ये चलती हुई यात्रा अब यहां तक ले चले हैं कि अब इस शरीर की बंतर के बारे में मैं आप सब लोगों को बताऊंगा। हेड से शुरू करेंगे हम लोग, सिर क्या है, बंतर इसकी कैसे बनी, इसके अंदर क्या है और ये काम कैसे करता है, और उसके बाद अगर ये बीमार पड़ता है तो कैसे पड़ता, हम फिजिकल की बात करेंगे। वो जो इंडिविजुअल बात जो मैंने आज की है ना वो उससे हाई लेवल की बात है, ये ठीक है, लेकिन अभी हमारा जो चलन चल रहा है फिजिकल को, वो बात मैंने बहुत बार कर दी आपके सामने कि हम लोग वो साइंस को पीछे छोड़ रहे हैं, जो हमारी साइंस थी ना पीछे वो उस इंडिविजुअल करेक्टर तक पहुंचने की वो हम छोड़ रहे हैं, छोड़ दी हमने, जो नर्वस देखकर ही बता देते थे कि तेरे तो किडनी में नुक्स है, तेरे तो फलानी जगह नुक्स है, अब वो छोड़ आए हैं। लेकिन जो भी अभी है उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, इस शरीर के बारे में आपको बताएंगे और ये बताएंगे कि किस अंग में कोई बीमारी क्यों पैदा हो जाती है, इसकी फंक्शनिंग की है, फंक्शन कैसे चलती है, उसमें रिकावट कैसे आती है। तो ये सब प्रोग्राम अब आगे से चलने शुरू होंगे। कल से ये प्रोग्राम जो पहला प्रोग्राम होगा वो अंग्रेजी में होगा, दूसरा फिर पंजाबी में होगा और उसके बाद फिर तीसरा प्रोग्राम हिंदी में, क्योंकि हरेक भाषा समझने वाला इन चीजों को समझ सके, हरेक आदमी ये समझ सके हम क्या कहना चाहते हैं। सो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने साथ और लोगों को भी जोड़ेंगे और वो भी इन प्रोग्रामों को सुने और फायदा उठा सकते हैं तो जरूर उठाए। रब रखा, आप सबकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूँ। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार
1: जी डॉक्टर साहब, थैंक यू, सत श्री अकाल। Thank you, Dr. Saab. Bahut shukriya. Bahut badhiya gallan ji. Thank you so much ji. Milde hain ji
0: fir parson.
1: Thank you.
0: Shukriya.
1: Thank you, Chima Saab.
2: Ji, Dr. Saab, thank you.
0: Thank you ji, meherbani.
1: Thank you, dosto. Tada vi srote ho, jehde pyar naal sunde ho. Badi meherbani. Fir agle program tak milde hain ji. Sat Sri Akaal.

observando todo. ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट के खूबसूरत श्रोतों, ए मोहब्बत दा पैगाम देने वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दिया खुशबुआ खिलारदा, वाह वाह। आप सब की जिंदगी के खेड़ों च वाधा करदा, खूबसूरत लबां ते हासे खिलारदा, आप दी सोच दियां खिड़कियां खड़का के आप सजणों दिलां ते दस्तक देण वाला।

0: से जिंदगी मिले सर आंखों पर।
1: मगर तुम्हें इस रास्ते पर जाने कौन देगा?
0: मुझे इस रास्ते पर जाने से रोकेगा कौन?
1: मैं रोकूंगी, मैं, अमीना बाई।
0: अमीना बाई, तुम तो इंसान हो, अब खुदा भी मुझे नहीं
2: रोकता। नालायक बदमाश, इज्जत के लिए मैंने तुझे पाला है, मैं तुझे जान से मार डालूंगी, जान डालो।
0: वरना कहीं ऐसा ना हो मेरी मोहब्बत के रास्ते में आने वालों की जिंदगी मैं ले लूं।
2: क्या कहा?

لا دو थैंक यू सो मच सारे श्रोतियों का धन्यवाद। प्रोग्राम की समाप्ति करते हैं जी, फिर परसों फिर मिलेंगे। सुनते रहो प्रवास रेडियो 24 आवर तुहाडे नाल हमेशा चलता है जी, जो मर्जी ला लो ऑन हुंदा। थैंक यू सो मच।

0: जब पावर में होते हैं तो आपस में लड़ते हैं, जब जब जब अपोजिशन में होते हैं तो हमसे लड़ते हैं, इनका काम है। सारिया के लश्कर थोड़े थोड़े थोड़े थोड़े रलते ने साडे सारे।
1: हाँ वो तो है ही है,
0: मेरे नहीं हूं देखो ना, उन्होंने भी 72 फिरके मुसलमान ठीक है,
1: एक देख
0: नहीं सकता।
1: हालांकि
0: पुस्तक नो ने हर हर कौम

0: घोड़ा चतुरा एक पैर है ना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना।
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत जात।

0: थैंक यू,
1: बहुत खूबसूरत भाई, वंडरफुल। हाँ जी, मैं तो देना अज दो शेयर करा, ठीक है जी?
0: जी आने दे जी।
1: असी भी तेरे गीत भी साढ़े तेरे ने, असी भी तेरे गीत भी साढ़े तेरे ने, ओए तेरे ही दिन रातां शाम सवेरे ने, किधरों आ जा आके दुख वंडा मेरे, मैं कला ए चंद्रे दुख वधेरे ने, भाई मैं कला ए चंद्रे दुख वधेरे ने। दूसरा जी, गली विचों माही लंघिया कूच अड्डियां।